तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सज्जन सुहेले रखो रखनहार दयाला नानक करके गोले तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सुहेले

दंडौत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ दोलना ते रखो प्रभु नानक देकर हाथ तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम्हें सजन सुहेले रखो रखन हर दयाला नानक करके गोले।

तिस हलत पलत मोहकारा से भगत से सेवका जिना हर नाम प्यारा तिन की सेवा ते हर पाई है सिर निंद कै पवै छारा जिस घर विरती सोई जाने जगत गुरु नानक पूछ करहो बिचारा चोह पीढ़ी आदि जुगाद बखीली कि नैना पायो हर सेवक पाए निस्तारा सूही महला चौथा जिथै हर आराध्य है तिथै हर मित सहाय गुर कृपा ते हर मन वस होर तो भिद लया न जाई हर तन संची है पाई जे हलत पलत हर हो सखाई रहाओ सत संगति संग हर तन खटिया होर था होर तो ओ पाए हर तन कितै न पाई हर रत्न का वापार यह रतन तन वे हजे कच्चा के वापार ये वाक है तन लया न जाई हर तन रतन जवे हर माणक हर तन नाल अमृत वेला बता हर भगती हर लिवलाई हर तन अमृत वेला बता का बीजा भगत खाए खर्च रहे ने खुटै नाही हलत पलत हर तन्ना की भगता को मिली बड़ियाई हर तन निरपो सदा सदा सिर है साचा इहो हर तन अग्नि तस्कर पाणी है जम दूत है किसै का गवाया न जाई हर तन को चका निर्णय आवई जम जागाती डंड न लगाई साखती पाप करके बिख्या तन संचया तिना एक विख नाल न जाई हलता विच साख दुहेले पै हथों छुड़क गया अगै पलत साखत हर दर गह ढोई न पाई इस हर तन का साहु हर आप है संत हो जिसनो दे सो हर तन लद चलाई इस हर तन का तोटा कदे ना आवई जन नानक को गुर सोजी पाई सूही महला चौथा जिस नो हर सो प्रसन्न होए सो हर गुणा रवै सो भगत सो परवान तिसकी महिमा क्या बनी है जिसका हृदय वस्या हर पुरख भगवान गोविंद गुण गाइया जियो लाए सतगुरु नाल ध्यान रहो सो सतगुरु सा सेवा सतगुर की सफल है जिस ते पाइय परम निधान जो दूजे पाए साथ कामना अर्थ दुगंध सरेव दे सो निफल सब अज्ञान जिसनो प्रतीत होवै तिसका गावै थाय पवै सो पावै दरगहे मान जो बिन प्रतीति कपटी कूड़ी कूड़ी अखी मीट दे उनका उतर जाएगा झूठ गुमान जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान दासन दास कह जन नानक जेहा तू कराहे तेहा हो करी बख्यान सूही महला चौथा कर सतवा एक ओ अहंकार सतगुर प्रसाद तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी ने धाना तुमरी महिमा बरन ना सा बरन ना सा को तू ठाकुर ऊच भगवाना मैं हर हर नाम तर सोई जो पावे तू राख मेरे साहेब तू मैं तुझ बिन अवर न कोई रहाओ मैं तान दी बाण तू है मेरे स्वामी मैं तुझ आगे अरदास मैं होर थाओ ना ही जिस पह करो बेनती मेरा दुख सुख तुझ ही पास विचे धरती विचे पानी विच काश अगन त्रीजै बकरी सिंह इक तै थाए रखे राखे मन हर जप भ्रम पाओ दूर की जै हर की बड़ियाई देखो संत हो हर ने माणे माण देवाए ज्यो धरती चरण तले ते उपर आवै त्यो नानक साजना जगत आन सब पैरी पाए सूही महला चौथा तू करता सब किश आपे जाने क्या तुद पह आख सुनाई है बुरा भला तुद सब किश सूजै जे हा को करे ते हा को पाई है मेरे साहेब तू अंतर की बिद जाने बुरा भला तुद सब किश सूजै तुद पावै तवै बुलावे रहाओ सब मोह माया शरीर हर किया विच देही मानुख भगत कराई इकना सतगुर मेरे सुख देव हे इक मनमुख तंद पिटाई सब को तेरा तू सब ना का मेरे करते तुद सब ना सिरे लिखिया लेख जे ही तू नद करे ते हा को होवै बिन नदरी नाही को भेख तेरी बड़ियाई तू है जाने सब तुदनो नित ध्याए जिसनो तुद भावै तिसनो तू मेल हे जन नानक सो थाए पाए सूही महला चौथा जिनका अंतर वस्या मेरा हर हर तिनके सब रोग गवाए ते मुक्त पै जन हर नाम त्याया तिन पवित्र परम पद पाए मेरे राम हर जन आरोग पै गुर वचनी जिना जप्या मेरा हर हर तिनके हो मैं रोग गए रहाओ ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण रोगी विच हो मैं कार कमाई जिन किए ते सहना चेत हे पपड़े हर गुरमुख सो जी पाई हो मैं रोग सब जगत व्यापिया तिन को जन मरण दुख भारी प्रसादी को विरला छूटै तिस जन को हम बलिहारी जिन शिष्ट साजी सोई हर जाने ताका रूप अपारो नानक आपे वेख हर बिकसै गुरमुख ब्रह्म बिचारो सूही महला चौथा कीता करना सब रजाई किछ कीचै जे कर सकिया अपना कीता किछना होवै ज्यो हर पावै त्यो रखिया मेरे हर जियो सब को तेरा बस ऐसा जोर नाही जे किछ कर हम साकह ज्यो पावै ते वै बख्श रहाओ सब जियो।

यदि उपाय हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीचौ कुंट जाते हर सिमरन तारी सब तरना सिमर सिमर हर कारण।

ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी कांत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी श्लोक।

0: कबीर जय जय हो फिर ठाओ न ठाए कराओ स्नेह बहरा उजर मेरे पाए
1: मन में
0: कबीर संतन की चुंगिया भली पठ कसती गाओ आग लोगो तै तौल हर जह नाही हर को।

कबीर धरती आकाश में दोए तू वरी अब दो खड़दर्शन संसे परे आर्च रासी सद कबीर मेरा मन में कछ नहीं जो कुछ है सो तेरा तेरा तुझको सौंपते।

चौर सो कड़ी तो नरखत रहे जियो नीचे लोइन क्यों करूं सावकड़ देखो पियो सोन सखी पी में जियो बसे जिए मैं बसे के पियो पी जियो पियो बूझो नहीं कट में जियो के पियो।